यमुनाम कुमार सिंह सकपन नोत ताबिरी राधा अनुराग आकाशवाणी इम्फाल हौसे अमुक लौबी रसी तेक्चम गंभीर डगी वांगशी।

तेक्चम गंभीर टगी वांगशीता बीरे आकाशवाणी इम्फाल हौसगेव की पुंग नेपाल तारपुकलना मेकुप घर की मतुंगा दिल्ली देगी रिलेद समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी सिलोंग देगी रिलेद अवांग नोंपुक लमदंगी पाव मथंग मथंग होना फंगीरगनी।

0: अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायत

0: तो में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर

0: ग्रहण किया सम्मान देश बंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi Mitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report. President

0: दोस्तों, आज कार्यक्रम हिंदी वार्ता में बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी प्रतिभाओं की कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोमेन लाइश्रम की। तो आइए सुनते हैं उनके बारे में उन्हीं की जुबान से। सबसे पहले आपका स्वागत है आकाशवाणी इम्फाल के।
1: धन्यवाद आकाशवाणी इम्फाल मेरे को बुला के कुछ बातें सामने रखने का मौका देने के लिए।
0: तो सबसे पहले डॉक्टर, आप अपना नाम और अपने बारे में बताएं।
1: जी, मैं डॉक्टर एल सोमेन कुमार सिंह, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS पुणे से किया है। मैं 2002 बैच के MBBS हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक था मेरा। उसके बाद फिर ऑल इंडिया से आया रिम्स में पीजी करने के लिए। ऑल इंडिया का अभी तक का रिम्स का मैं सबसे हाईएस्ट रैंक हूँ।
0: अच्छा।
1: और MS में मास्टर ऑफ सर्जरी में मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर, अभी आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, इसके बारे में भी आप बताइए।
1: जी, मैं खांगाबुक एक गांव है थौबाल डिस्ट्रिक्ट में, उससे बिलोंग करता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरा मदर है, फादर है, मेरा छोटा भाई है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक लड़का भी है।
0: अच्छा, आपका बेटा भी है, तो अपने बेटे का नाम भी बता दीजिए।
1: हाँ, मेरा बेटे का नाम है लियाम लाइश्रम,
0: अच्छा
1: अभी 2 साल का होने वाला है अभी।
0: अच्छा तो डॉक्टर, अभी हमने परिवार के बारे में आपसे कुछ जाना, अब हम जानना चाहेंगे कि पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आप डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत सारे चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए।
1: देखिए, पहला डॉक्टरी के बारे में थोड़ा
0: जी जी
1: बताएंगे। तो पहला, मैं हमेशा मैं डॉक्टर्स को भी या जूनियर्स को या कोई भी मेरा दोस्त हो, मैं इनको बताता रहता हूँ कि अगर आपने अच्छा डॉक्टर बनना है तो पहला एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।
0: जी बहुत सही बता रहे हैं
1: देन
0: आप।
1: उसके बाद आप अच्छा डॉक्टर बनोगे। आप पहला पैसे के सोच कर पैसे के पीछे भागोगे तो आप अच्छा डॉक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागोगे तो क्या है कि आप अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट सब करेंगे,
0: जी
1: अननेसेसरी ऑपरेशन आप कर सकते हैं
0: जी
1: पैसे के लालच में आगे। ये पहली बात है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपको पब्लिक ऐसे याद करेगी ये बहुत पैसा वाला डॉक्टर है, उसे नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये चाहिए बहुत अच्छा डॉक्टर।
0: अच्छा इंसान जरूरी है।
1: यस, पहला अच्छा इंसान बनेगा तब अच्छा डॉक्टर भी
0: जी
1: बनेगा। काम ये है कि हम लोग का बहुत मैनी ए टाइम्स ऐसा पब्लिक को देखता होगा कि ये ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ, ये वो। ठीक है, हम सब का राइट है, अपने हिसाब से हम करते हैं। तो क्या है कि हम बहुत बार भी हमने बहुत सेक्रीफाइसेस किया है, बहुत बार हमने नहीं सोया है, रात रात भर जागते हैं हम पेशेंट के लिए, उठना पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हम लोग को स्ट्रेस भी होता है लाइफ में,
0: क्योंकि हमारा काम जरूरी होता है।
1: जी, तो ऐसे बहुत टाइम भी आता है कि हमारे पास खाना भी हम खत्म ही नहीं कर पाते
0: जी
1: क्योंकि इमरजेंसी आ गया, भागना पड़ता था
0: जी।
1: तो ऐसे बहुत बार किया है, बहुत बार हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा।
0: जी।
1: ये अपना काम ऐसा है कि इसी टाइप का सिचुएशन आ जाता है
0: कि काम सबसे पहले और बाकी बाद में।
1: बाकी बात में तो हम क्या करते हैं, हम बाकी और भी हम एक्ट है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर में हम कभी कभी डांस भी कर लेता हूँ मैं।
0: जी,
1: हम कभी कभी गाना भी गाते हैं।
0: हाँ, फिर
1: और
0: आपको घुड़सवारी का भी शायद से शौक है।
1: जी, हम करते हैं, मेरे पास है घोड़ा
0: अच्छा
1: रखा हुआ है।
0: अच्छा और साइकिलिंग भी करते हैं, माने हर क्षेत्र में क्या कहे, जो परफेक्शन होता है हमने देखा है आप में।
1: मुझे परफेक्शन का तो पता नहीं, बट हम क्या होता है कि हम बॉडी को भी फिट रखना है
0: जी
1: तो एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक ही एक्सरसाइज में आदमी बोर हो जाता है, तो हम जब भी टाइम मिले, कभी मान लो कि अभी जैसे इम्फाल में आ गया तो मैं हफ्ते में 2 दिन तो मैं इम्फाल में रुकता हूँ। तो क्या है कि वहाँ पे जिम नहीं है, तो मैं अभी जिम भी शुरू किया है। तो क्या करता मैं पहाड़ पे चढ़ने जाता हूँ,
0: अच्छा
1: कहीं वॉकिंग पे चले जाओ, नहीं तो रूम में ही हम वर्कआउट कर लेते हैं। मैं जूनियर्स को बुलाता हूँ,
0: अच्छा
1: वही है।
0: तो मतलब कि आप अपने घर से यहाँ कैपिटल में इम्फाल में आप अप डाउन, मतलब आपके काम के वजह से, आपके हॉबी के वजह से आप आते जाते रहते हैं।
1: जी, काम मेनली तो काम की वजह से मैं इम्फाल में भी प्रैक्टिस करता हूँ,
0: अच्छा
1: उरीपोक में ITD हॉस्पिटल में।
0: अच्छा तो बातचीत में ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी किस किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं।
1: जी, मेरा मेन मेरा OPD और OT दो ही हॉस्पिटल में होता है, एक तो सूर हॉस्पिटल खांगाबुक में, दूसरा एक है ITD हॉस्पिटल एट उरीपोक। और कभी कभी मैं बाकी एज ए विजिटिंग सर्जन, एज ए कंसल्टेंट, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके मैं ऑपरेशन करता हूँ, जैसे एशियन हॉस्पिटल, त्रेवी हॉस्पिटल, और ये JR हॉस्पिटल, अफी, मुझे नहीं लगता है कि मैंने सीजा और जेनिम्स को छोड़कर जितना भी इम्फाल का हॉस्पिटल है
0: हॉस्पिटल से।
1: इसमें विजिट ना किया होगा।
0: अच्छा, मतलब हर हॉस्पिटल में आपने अपना जो क्या कहें, जो जादू है, माने जो आपका जो काम है वो आपने दिखाया है।
1: जी, एक वन पॉइंट और अदर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने विजिट किया हुआ है।
0: अच्छा डॉक्टर, आपके लाइफ में सबसे चैलेंजिंग जो सर्जरी है वो क्या-क्या आपने किया है?
1: देखो, हमारा जो ब्रांच है ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी बोलते हैं। ऑब्स्टेट्रिक का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से शुरुआत, प्रेगनेंसी से लेकर एंड तक, बीच में जो मिसकैरेज भी हो गया हो, आई मीन डिफिकल्ट डिलीवरी भी हो गया हो, सी सेक्शन, जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, हम उसको
0: जो
1: ऑब्स्टेट्रिक
0: प्रॉब्लम्स।
1: बोलते हैं।
0: अच्छा
1: और गायनिकोलॉजी का मतलब ये है कि ये गायनी का मतलब, फॉर एग्जांपल आपको ओवेरियन सिस्ट, एनी गायनिकोलॉजिकल डिसीज और इनफर्टिलिटी, ये सब आता है हमारा गायनिकोलॉजी में।
0: गायनिकोलॉजिस्ट में।
1: तो हमेशा चैलेंजिंग सर्जरी इसमें होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स में
0: अच्छा
1: जनरली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं। और आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे सीजीरियन सेक्शन का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, नॉट ओनली इन मणिपुर, हर जगह।
0: अगर कोई औरत गर्भवती होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी दे पाएगी कि नहीं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो डॉक्टर्स प्रिफर करते हैं CS को, तो इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? खान पान के वजह से या हेल्थ इश्यूज रिलेटेड जो है, स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम होती है, इसके कारण इसका जो जड़ है वो आपके हिसाब से क्या है?
1: देखिए, सी सेक्शन का रेट जो है ना, लो इनकम में भी, मिडिल इनकम में भी, हाई इनकम में भी इंक्रीज हो रहा है। नॉट ओनली दैट, इवन अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री में भी सी सेक्शन के रेट इंक्रीज हो रहा है। इसका बहुत सारे, इट्स अ मल्टी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये पेशेंट के साइड का भी फैक्टर्स होता है और डॉक्टर के साइड का भी फैक्टर्स होता है,
0: अच्छा, दोनों साइड से।
1: दोनों साइड से होता है। देखो, डॉक्टर का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। मान लो कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होगा तो उनको रात को जागना पड़े शायद,
0: शायद।
1: तो उनको वो प्रिफर नहीं करते हैं, मान लो। नहीं तो पैसा की लालच भी हो सकता है।
0: अच्छा, मतलब दो तरफ से हमें
1: हाँ,
0: देखना है।
1: और ये भी हो सकता है, नॉर्मल में कभी कभी अनसर्टेनिटी भी होता है। मान लो कि बच्चा डिस्ट्रेस में हो गया और डिलीवरी में कुछ भी हो सकता है, तो पेशेंट पार्टी बोलेंगे आपने पहले ऑपरेशन क्यों नहीं किया। अगर नॉर्मल से नहीं होना था, नॉर्मल से प्रॉब्लम अगर ऐसा हुआ है, तो आपने पहला सी सेक्शन क्यों नहीं किया।
0: मतलब अगर नॉर्मल में बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन राइज होता
1: हाँ,
0: है।
1: अगर बच्चे में कुछ डिस्ट्रेस आता है, ये कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और पेशेंट का भी बहुत सारे, आजकल ये हो गया कि सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट,
0: अच्छा, पेशेंट के साइड से
1: रिक्वेस्ट
0: रिक्वेस्ट
1: करता है।
0: करते हैं।
1: जो सी सेक्शन इज ए बहुत अच्छा सर्जरी है, ये लाइफ सेविंग है मदर और बेबी के लिए,
0: अच्छा, दोनों के लिए।
1: दोनों के लिए इज ए लाइफ सेविंग सर्जरी। बट प्रॉब्लम तब आता है जब अननेसेसरी सिजेरियन सेक्शन आप करने लगते हैं,
0: हाँ, तब प्रॉब्लम
1: तब
0: आता है।
1: प्रॉब्लम है।
0: अच्छा, और डॉक्टर, यहाँ तक हम सुनते भी हैं कि लोगों का जो माइंड सेट है, हम छोटे से सुनते आए कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छा होता है, जो सी सेक्स जो है वो मतलब ये ठीक नहीं है, कैसे भी करके हमें नॉर्मल डिलीवरी करना है। तो इस माइंड सेट के वजह से जो जो जो पीढ़ियाँ आ रही है वो यही समझती कि नॉर्मल डिलीवरी ही सब

0: सबसे अच्छा होता है। लेकिन आज पता चला कि सीएस जो है बच्चे के लिए और माँ के लिए सबसे बेस्ट है।
1: नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
0: अच्छा
1: मगर ये है कि सी सेक्शन की वजह से बहुत सारे माँ और बच्चे की जान बचाई है, इंडिकेटेड में बहुत सारे मैटरनल डेथ जैसे होता है, जो विलेज में जो सी सेक्शन के फैसिलिटीज़ नहीं होता है उसमें बहुत सारे बच्चे
0: मर जाते
1: मर
0: हैं।
1: जाते हैं और माँ भी मर जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से। कोरोना के टाइम में भी हुआ है, मेरे ड्यूटी में तो नहीं थे, एक ऑब्स्ट्रक्शन लेबर करके पेशेंट ब्रॉट डेथ, और मेरे ड्यूटी में एक बार भी हुआ था वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आ गया। अगर अगर उस पेशेंट को हमने अगर ऑपरेशन नहीं किया होता तो वो जिंदा नहीं हो सकते,
0: जिंदा
1: तो
0: नहीं
1: हमने
0: हो
1: जान
0: सकते।
1: बचाया उनका, पहाड़ से आए थे।
0: अच्छा
1: मतलब मेरा ये कहना है कि सी सेक्शन एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, इसको मिसयूज नहीं करना है बस।
0: इसका मिसयूज ना करें।
1: हाँ, मैंने आपको बताया जैसे पेशेंट भी समटाइम्स उनको लेबर पे नहीं चाहिए, उनको वो उनके
0: मतलब
1: पास इतना
0: आराम
1: स्ट्रेंथ
0: से,
1: नहीं है, आराम से
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: डिलीवरी
0: डिलीवरी
1: चाहिए।
0: करना है, हाँ, तब वो खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि
1: हाँ,
0: सीएस करवाएं।
1: तो ये भी बहुत मोरली और इथिकली क्या बताऊँ उसको, हम एनालाइज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
0: अच्छा
1: कॉम्प्लिकेटेड मतलब मदर जो सीएस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? मान लो कि हर औरत को अधिकार है खुद के हिसाब से,
0: खुद के हिसाब से।
1: मुझे कहाँ डिलीवरी करना है, कैसे करना है, कैसे करवाना है, एवरी पर्सन हैज़ राइट, सब औरतों को अपना राइट है। तो उनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थिति आ जाता है, तो हम उनके मोरल या राइट मानो जो जो भी आप समझे उनके सुने जाए कि हम जबरदस्ती करें नहीं, आपको तो नॉर्मल ही करना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं होता है। तो सीजेरियन सेक्शन ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट इज़ राइजिंग, और प्राइवेट में तो अगर सीजेरियन डिलीवरी मैटरनल रिक्वेस्ट आते हैं तो हम करते हैं,
0: करते हैं क्योंकि ये उनकी इच्छा है, हम उसे नकार नहीं सकते।
1: और सीजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट का एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ।
0: हाँ बताइए।
1: अगर आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, अगर हमने देखा है कि ये नॉर्मल हो सकता है तो रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमको नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट सेटअप,
0: अच्छा हाँ, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते
1: क्योंकि
0: हैं।
1: मैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे फ्रीज में जैसे मेडिसिन्स आता है, जैसे PMJY का हो गया, इसमें मेडिसिन्स और बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट का आता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, तो मान लीजिए उनको सीजरन सेक्शन की जरूरत नहीं है, हमको भी पता है ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, मगर मान लो कि उनको हमने सीजरन सेक्शन कर दिया तो रिसोर्स तो कम होगा, तो अगली बार कोई गरीब आएगा
0: हाँ, तो उनको
1: जो सी सेक्शन की एब्सोल्युटली जरूरत है,
0: जरूरत है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो
1: उनके
0: जाएगा।
1: लिए रिसोर्स कम होगा। प्राइवेट में क्या है कि वो पे कर रहा है, उनका राइट है, खुद पैसा दे रहे हैं तो उनकी
0: हाँ,
1: मर्जी है,
0: उनकी मर्जी है।
1: क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा नहीं दे रही उनके डिलीवरी के लिए, बट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रिसोर्स खत्म होगा, तो इसलिए दूसरे जो गरीब जो इंडिकेटेड आएगा तब रिसोर्स कम होगा।
0: हाँ, उनकी मदद नहीं कर पाएंगे।
1: हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट में तो सीजरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट आपको बहुत सारे काउंसलिंग करना पड़ेगा पेशेंट को।
0: अच्छा, पेशेंट के लिए काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होता है।
1: यस, काउंसलिंग बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर, और एक बात, सालों से हम देख रहे हैं कि छोटी लड़की से लेकर मिडिल जो एज की जो औरतें हैं, सीस और फाइब्रोइड, इसके जो केसेस है बहुत बढ़ रही हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है?
1: देखो, फाइब्रॉइड जो है मान लीजिए 25 से 30 उम्र की औरतें लड़कियां, उनको कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको अल्ट्रासाउंड लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, रेंडमली मैंने पिकअप किया 100 में से 20 तो फाइब्रॉइड होगा, फाइब्रॉइड रेज तो पहले से इनका रेंज उतना ही है, मगर
0: अच्छा
1: ये है कि आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन आ गया है, अभी इजीली अफोर्डेबल है अल्ट्रासाउंड मशीन, तो डिटेक्शन ज्यादा हो गया है, और फाइब्रॉइड ऐसा चीज है जो इनका जनरली पेन भी नहीं करता, अगर फाइब्रॉइड रहकर भी उनको पेन एब्डोमेन हो रहा है तो वो फाइब्रॉइड की वजह से नहीं है, हमको कुछ और वजह ढूंढना पड़ेगा,
0: मतलब उसमें कोई दर्द वर्द नहीं
1: नहीं
0: होता।
1: होता, इसलिए फाइब्रॉइड इतना बड़ा बड़ा फाइब्रॉइड लेके आता है, अगर पेन होता तो शुरुआत में ही पता चल जाता।
0: अच्छा, और डॉक्टर सीस, इसके बारे में क्या बताएं?
1: देखो, सिस जो है लेडीज का, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताता हूँ, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें क्या होता है कि एक यूट्रस होता है, उसके बगल में दो ट्यूब्स और दो ओवरीज होता है, फाइब्रॉइड जो है वो यूटरस का डिसीज है,
0: अच्छा
1: और फाइब्रॉइड इज ए नॉन कैंसरस, फाइब्रॉइड से कैंसर नहीं होता है. और हर फाइब्रॉइड वाले को हम ऑपरेशन नहीं करेंगे. अगर फाइब्रॉइड है तो हम चार कंडीशंस में ऑपरेशन करते हैं. एक तो फाइब्रॉइड एकदम बहुत बड़ा हो गया साइज, दूसरा ये है कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, खून बहुत ज्यादा जा रहा है, दैट इज सेकेंड कंडीशन. नंबर थ्री इनफर्टिलिटी. फाइब्रॉइड है, हम ट्रीटमेंट इलाज कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब हम फाइब्रॉइड निकालने के लिए सोचेंगे.
0: अच्छा.
1: चौथा ये कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, मतलब बार बार उनको मिसकैरेज हो, तीन और तीन से ज्यादा मिसकैरेज हो रहा है, फाइब्रॉइड है, तब हम फाइब्रॉइड निकाल के देखेंगे. और फाइब्रॉइड मेनोपॉज के बाद, मतलब मेंस खत्म होने के बाद, ये इसका कोई रिलेवेंट भी नहीं है जनरली. और ओवेरियन सिस्ट जो है वो ओवरी का है. पब्लिक के दिमाग में है कि कोई भी ट्यूमर आ गया, कोई सिस्ट आ गया, तो दिमाग में पहला था कैंसर ना हो जाए.
0: हाँ, सही बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे कैंसर फॉर्म होगा.
1: हाँ, क्या होता है कि ज्यादातर सिस्ट, मैं कहूँ तो मोर देन 95% सिस्ट तो कैंसर ही नहीं है.
0: अच्छा, ये मतलब कि लोगों को लगता है
1: हाँ
0: लेकिन असल में नहीं है.
1: जी. और सिस्ट का भी तीन टाइप का होता है. एक हम जो फंक्शनल सिस्ट करके कैटेगरी वन है, ये ज़्यादातर यंग औरतें में, मतलब लड़कियों में आते हैं हमारे पास. मेरे पास ये सिस्ट हो गया, ये हो गया, मैं उनको समझाता हूँ. ये फंक्शनल सिस्ट होता है जनरली. क्या होता है कि हर महीने ओवुलेशन होता है. ओवुलेशन से क्या होता है कि एक रप्चर होता है, उसके बाद वो फॉलिकल जो है वो सूख जाएगा. जनरली क्या होता है कि वो ओवुलेशन नहीं कर पाता है, और ओवुलेशन, मान लो ओवुलेशन हो गया तो भी वो सूख नहीं पाता, उसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है. उसको अल्ट्रासाउंड में हम सिस्ट दिखते हैं, इसको फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं. इसमें भी तीन चार कैटेगरी आता है, फॉलिकुलर सिस्ट, हिमोरेजिक सिस्ट, कॉर्पस लूटियम सिस्ट. ये अपने आप 3 महीने के अंदर ठीक होगा, कोई दवाई का जरूरत नहीं है. और दूसरा होता है बेनाइन सिस्ट, ये अपने आप ठीक नहीं होगा मगर कैंसर नहीं होगा. इनमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे सीरस सिस्ट एडेनोमा, म्यूशिनस सिस्ट एडेनोमा, डर्मोइड सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, पेरा ओवेरियन सिस्ट, ये सब कैटेगरी जो है,
0: बहुत सारे प्रकार
1: है. यस, ये जो है ये कैंसर नहीं होगा मगर अपने आप ठीक नहीं होगा.
0: अच्छा.
1: और तीसरा होता है आपका मैलिग्नेंट सिस्ट जो बोलते हैं ओवेरियन कैंसर.
0: अच्छा.
1: तो ज्यादातर मोर देन 95% तो नॉन कैंसरस ही, बस पब्लिक ऐसे ही डरे हुए.
0: जरूरत नहीं है.
1: हाँ, जरूरत नहीं है,
0: मतलब जरूरत है समय से चेकअप कराना.
1: जी
0: हाँ, समय से जांच कराना, दवाई ठीक से लेना जरूरत है. लेकिन इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि जिससे जो बीमारी है बेमतलब बड़ी हो जाए. तो हमें डॉक्टर बेवजह डरना नहीं चाहिए.
1: जी, अगर मान लो कैंसर हो गया तो भी अच्छे से इलाज करेगा तो आजकल तो बहुत अच्छा एडवांस्ड हो गया है.
0: हाँ, हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर स्थिति में हमें डरना ही नहीं चाहिए.
1: जी.
0: हमें उसका बड़े ही हिम्मत के साथ, हौसला रखते हुए हमेशा सामना करना चाहिए. डॉक्टर, हमने सुना भी है, देखा भी है, आप अपने काम के साथ साथ, आपके बहुत सारे हॉबीज भी हैं, उसके साथ साथ आपने बहुत सारे चैरिटी, हमें लोगों की सेवा की है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं.
1: देखो, चैरिटी हम बचपन से थोड़ा ह्यूमैनिटी के बारे में भी सोचते हैं. और जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी अलग चीज है, एम्पैथी अलग चीज है,
0: अलग अलग चीज है.
1: हम थोड़ा एम्पैथी वाला आदमी है.
0: अच्छा.
1: जितना मेरे लेवल पे कर सकते हम करते हैं. जैसे मान लो मैं रिम्स में था, उस टाइम थोड़ा स्टाइपेंड भी मिलते थे, तो कुछ पेशेंट देखते थे जिनके पास मेडिसिन खरीदने का पैसा नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हेल्प किया है. जैसे ओटी के उनके पास पैसा नहीं थे मेडिसिन खरीदने का, खुद मैंने पैसा दिया और मेडिसिन खरीद के दिए. एक इंसिडेंट भी है, पेशेंट ट्यूब में प्रेग्नेंट होके रप्चर होके आ गए.
0: अच्छा.
1: हस्बैंड और ना आए थे, इमरजेंसी सिचुएशन थे. उस टाइम तो ब्लड भी हमको पहला ब्लड देना पड़ता है, डोनेट करो फिर ब्लड लेके आओ.
0: पहले डोनेशन.
1: हाँ, मैंने खुद ब्लड डोनेट किया उस पेशेंट को.
0: अच्छा.
1: और खुद मैंने ऑपरेशन किया उसको.
0: अच्छा, मतलब इंसान के लिए आपने खुद अपना खून भी दिया और ऑपरेशन भी आपने ही किया.
1: हाँ, नॉट ओनली दैट पर्सन, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने खून दिया है. और मेरे भाई को, मेरे रिलेटिव्स को भी बुला के, मेरे फ्रेंड सर्कल को भी बुला के ब्लड डोनेट करवाया. और ऐसे करते करते अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजिशन थोड़ा बेटर हो गया. तो बहुत सारे मैं जनरली, मेरा चैरिटी जो आपको दिख रहा है वो ओनली 30% है, 70% तो आपको दिखाई भी नहीं देगा. बहुत सारे मैं ऐसे है, 10-15 फैमिली को हर महीने मैं पेंशन देता हूँ, 1,000 से लेकर 3,000 के रेंज पर. और बहुत सारे घर पे आते रहते हैं लोग, क्लब का, इसका उसका, मैं देता रहता हूँ सोशल मीडिया में, जैसे मैं डालता हूँ वो, तो मेरा जो करता है उसका 20-30% ही होगा।
0: क्योंकि डॉक्टर, सबसे जरूरी है दिखावा नहीं बल्कि सच्चे दिल से लोगों की मदद करना, ये सबसे
1: देखो
0: जरूरी
1: थोड़ा है। दिखाना भी जरूरी है कि
0: अच्छा, आज के जमाने में दिखाना भी
1: नहीं
0: बहुत,
1: दिखाना भी जरूरी है क्योंकि इंस्पिरेशन मिल जाए। और भी बहुत,
0: हाँ, ये भी सही
1: बहुत
0: बात है।
1: लोग हैं जो पैसा है, एक रुपया अपने भाई को भी नहीं देना चाहते।
0: शायद आपको देखकर हमारे जो श्रोता जन है वो भी दूसरों की मदद करें।
1: जी मैं ये नहीं बोलूंगा आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 50 रुपए इनको दे दो, ऐसा नहीं। आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 5-10 रुपए तो जो जरूरत है इनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो जितना सबको दे दो, ऐसा नहीं है। आप जितना आप आपके लेवल में कर सकते हैं
0: जितना
1: वो
0: आप
1: करना
0: कर
1: चाहिए,
0: सकते हैं, हाँ,
1: जितना आप
0: उतना
1: कर
0: करना
1: सकते हैं वो
0: चाहिए।
1: करना चाहिए।
0: डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हमारे आकाशवाणी
2: हिंदी वारी वता की थरमता बिरे आकाशवाणी इम्फाल औजी दिल्ली लगे रिले द वर्ल्ड न्यूज ताव फंग बिरगनी।

0: 땜씨 그러기노 나나 있는 살 거구나 속 염나 로이나르가 그러기노 땜씨나 꼭 통나두나 그래 나나 오데시는 비오
1: 이때 이마기 이붕오 깔실이야
0: 땜씨
1: 마이때 예이 코이기 레이 빡다 닝올 나마 밤짓 루바다
0: 땜씨
1: 마마 마빠 마붕 마빠 오이바싱나 잉콜다 호바 마나마싱 하이라 아숨네 헤헥 합네이도 나시디 나타이 마수 마이타이 레이팍 강 레이팍도 닝싱루레
0: 댐시
1: 마이타이 이레이사싱 나쿤다리바 사루이사라이람담기 포톡 낙타니 이닝 타우다 까짜락바니 이닝 타우기 까다 텔로
0: 파그네 댐시 나나우 까짜룩이게
1: 이샘시 나나우 한자락리
2: 라니 마하라니 निंग थोरेल स्वर्गदेव राजे स्वर्गी महारानी कुरंग नयने
1: इसेमसी मिंग थोला सिदा आइगिरी चाउक थोप पले जदे मैतै निंग थौ इतो निबुंगो चिंग थंग खोम बगी ममोम लोय फोंग द लोक पिनी आइदी
2: लाइरी इम बिमकुम निंग थीबी नंगना इंद्र बंग ससिद लेंग शिल्लक पदगी रानी लैरांग खुदिंग मक कबो कंग मपान ओन करे
1: इसेमसी
2: गमला अदलै तिंगली बलै रांगदी ना पगिना सोम नत्ते निंग थौसिना मागी मित मांगदा लै तेंगी ओइनदंग गेंगली
1: इसेमसी गी पाखोंग ओइबा वहाई सिंग अदुगी मरम अपंग बिना नाउदी खंजदे
2: मसिगी मरम पुमनमक नंगननी नंगना
1: करमना
2: इंद्र बंग ससिगी निंग थौरेला सिनदी खल्ली कसारमदी मैतै निंग थौनिबु लान छोंगनदना महाकी मखा पोलहली
1: करी
2: महाकी मखा पोल हल्ली बदी शब्न तगी निंग थो अनी खगतने
1: सीमसी
2: अदुगा लान छोक न दना महारानी कुनग हम दोई दी मैते ही निंग ओल मगी मखा पोल हल्ली राजेश्वर निंग थो ना न तोन दा जोई सिंग मिंग थोन पी बदा न तो निबुंगो सिंग थंग खोंबा हराओ न नोक शकी
1: सीमसी
2: अदुगा नंग ना ऐ कोई कुनग हम दोई दा इसेमसी नत्रग इसेबे महाई नमिंग थोन पीवदा आई खोई न पेन थोक लमगनी खनब्रा
1: ओ इसेमसी खोई गिनिंग दोलना अदुक चाउ न पोम लमगनी हाई बदी ननाउ दी नोंग मतसु खल्लु दे
2: थांग पाई दुन यालिब नंग नदी करम न सैना पंगनी
1: इसेमसी
2: नंगी न टिक न याई थांग न शोक लिब सिंगसे मखोल थोक तन कपली हाई बनंग खंग
1: इसेमसी ननाउ दी लाई बक्ती बनी इसेम सिंगि थमोय मसक खंगजरे इनिंग थौगि अयाब लौजरगा इरेसा सिंग न खुंदारी बा सरुई सराई लमदमदा निंग थौन साबिरि बा संगाई दुदा चच्च खगे
2: ओ नंग न सरुई सराई मोग लौ घाट सत खि बगि मरम मदु निंग थौन हंगलक पदा पौखुम मदु कमलावरी ओहेन गदोरि ब्रा
1: आइदी असेम बा पौखुम कैदो ngai da su pizza khidri
2: mi oi ben achum mangak ta tawduna nungai ne hing ba ya de hebasi na pam lam dam shana konung da gi tam jarak ta
1: SMC
2: ashem ba aran ba su khara su yai phagadab oi ra badi mado taw gadab ne mashe lengak lo
1: SMC ne pam bi ri ba si kari no maram thoi dok ta bada i pam konung paban badi phong da lok pina ta ba ngam jade
2: lo na bi gi ming thol bu na sa gi phijet lai ting ga raung ne ya jari bu do na sem sing da lang ching na bani na
1: ning thol la sida ai na khoi da ram ga ni khan bi bra ai na ahal loi ra ba na khoi gi ning thau re la sida lo na bi oi ra khi badi i rei pak mai tai lai pak ki pham ba gi da ma kat thok pani मसी न निंग थौरेल राजेश्वर गी अपाम खुदिंग आइन ngakli मसीसु इंद्र बंगस सिगी याई फन बने इतो निंग थौना मनिंग तंबगी उसिन नोय हन बिरबि आइदे अहोम लै पाक न मिनाय ओइन सिजन न बसु कांग लने लो न बि हाय बसिबो करम मनु पीगि मपु कना न पाम लम गदगे मसीदी इराई बक नराई बक तम खब नोंदम खोलनी
2: नोंदम खोल द तैन गनो रानी मिंग थोल द अपाम ब पोक नोरे हाय न मयक छेंगो
1: ओ आइगी मांग द लो नबी ओइबिरम लबी इसेम छि खोइदी अपाम ब द युम फम मोइबे खिबरा
2: गि चिन थक त खम लबदी शिवन त न करि छु फंग लो
1: सिंग न र प खोदि माइक थी ब पी ब द कुरंग न यनि गे अरु बन ते लाइबक मान रबी लो नबी सिंग पन सिंग न अंगम म थौ सिंग न नुपी बु इया या बनि खल्ली बसिगी मायोक्ता लान हौसी आइ रबदी लुचिंग बि आइ

0: Inning!
1: Inning Toe! Inning Toe! Inning Toe! Inning
2: Toe! दरबारगी पाउनी
1: इनिंग तो दरबारगी करी पाउ ओइरे बनो इनिंग तो
2: कृति चंद्र बोर बरवाना लैपा असगी पुया कया खोंकत तो न मही तुम न थारी मोरान सिंगी गुरु अच्त बूज महंत की थमोई सोप नब थबक न न तौरी बसिबु चुमली बरा वाई बसिबु पंबाल ना नबगिरा नत्रगा अपुन मले पाक मियाम ना नबगी दमक तरा
1: इन्हीं तो
2: नत्रगा नौमा नौमा अहिंगमा कृष्ण चंद्र बु थांग न यान की हाथ नबो होने की मशिबु मशिबु ऐ लोग तो नबो मालो हिदरा
1: मन पंत होते इन्हीं तो चिंगनरी बपांजीरा ती कांतबु सी बगी चैराक पीखे बदुना बोर बरुआगी अपेन बोरम लगनी इनिंग थाउदी बोर बरुआना मागी इमुंगी निंगोल मवानी हाइना कलमगनी द इनिंग थाउ
2: नहीं नहीं
1: इनिंग थाउ
2: राजनीति दी राजनीति ने
1: इनिंग थाउ
2: ताज़ बदक पेन थोक लोई द बनी तबोवा थोक सिंग अपब थोक दोक तो उन थोक पंगम बदुनी ने अपब राजनीति हरी बसे
1: इन्हीं तो अमाई बरा माँ कांत बेज बरुआ नदी वाई अम नंगांग बिगनु हाई जरम बनी दो इन्हीं तो
2: करम न तुम्हें न येंग दुन लाई के दगे अहम ले पाके नो न ईरी बपुया कया कोंकत तुन कृति चंद्र पाम दब यानिंग दब पुया सिंग मो वक्सिंग नोंग मपान बदगी पैसिन दो नमय थारत ली पुयाय जब सिंग दो न इपोंग पोंग न लाउरी कृति चंद्र बोर बरवा नंग सुपोया न तांगोय ओन मगम नंग सागे तुम्बोयो हाय न मागे मथकता मागे मथकता कनान बो असुम न लाउ वक नमगने नमली बसे नमली बसे आएगी तो इंसिन माल वही दरा
1: इन्हीं तो इन्हीं तो
3: संसिल कराओ इतनी संजना नंग बुकोनुंग नसीद थांगजिल लग पड़ेगी सिंग नबंग आक तो पकड़ते
1: नते
3: इन्हीं तो की पुंसी लोई की नब नंग ने इन्हीं तो बुसी भी आवही दाग पिचक
1: नते नते मधुमी नंबने
3: नंबन नते नंग नरानी और इतनी बसी बु इन नबंग ससिंग इफ़ामाल इन थो नब्रा
1: नते
3: सलो सरको सलो
1: इनिंग थोड़े ननाई कमलावरी बुथा जबियो इनिंग थोगी सना पंबल खादा तांगजलिन ओयरी भी मागी होगी सही ठेंगे इनिंग थोड़ो पंग बिरी बस
3: तांगजलिन नशीब तन थोक पगे यहाँ पर ननाई कमलावरी है यो जगे इनिंग थो हाउगत पिरो इनिंग थो सनाया तंग दाउ थबिरो इनिंग थो
2: मामा सलवी कमला बढ़िया
1: इन्हीं तो
2: नंग हाँ ना ना आउ सिंबो लो न चान लोई ने मेरा उको रानी
3: मतों न तोड़ी बसी थी इन्हीं तो इन्हीं तो इन्हीं तो
1: कहीं ना तोड़ी बसी
3: करी मत को बगिने इनिंग तो मांगले नवक मांगले लाई पाक में आप पुम नमक इंद्र बंग से की मापूनो आई ना पता करे
1: करी नो आई ना तारी बसी मो
3: इनिंग तो
1: इनिंग तो ओगलोइनिंग ताऊ करीगे नो तुम न ताऊरी बदु बोइनिंग ताऊ इनिंग ताऊ की तवाई आउ न बाग जाग से इतानुंग दचे न कौन

0: रंगने ने
1: इसे से
0: तुमको मिया सगेगी अथोई बिरानी नसीम ना नंगी न फमदा हन्ना हन्ना संगजरिए
1: इसेम सी
0: इसेम की बेमा लाओ नसीम ना मुक्त कौन गिलाओ
1: इसेम सी
0: नसीम ना मुक्त पे न कौन गिलाओ इसेम की बेमा नंगी लोग सिंगी पुआरी दी नुमित थान ले दी बमकई मुन्ना इधर नले होड़गने
1: इसेम से
0: नंग ननु पियो भी कयागी इकाई खुम नवसुकन बीरे हम ले पक्की फंबाल सु नंग नकन बीरे
1: इसेम से
0: नंग दे मैं ते ले पक्की असेंग बसनाई मैं ते निंगोल कुरंग नये नीने
1: इसेम से
0: जय जय कुरंग नये निगी जय जय जय कुरंग नये निगी जय
2: इमा सकती तैमा
1: इनाउ तो
2: अपन मननाउ न खलुबा फत्त बगी आरान में वकल को पियो नसीदी इंद्र वंश की फंबाल कनागी शु ओइत्रे थौना फवी लो सिंह चाओ भी गुरंग नहीं निगी ओइरे नसीदी नसीदी ननाउ की थमोइद सिंह नव इरक मत तथमदना इमागी मफम द कथोक चरबनी लोबिरो इंद्र वंश की फंबाल लैतेंग्री उनी फंबाल तक्षिद इमा
1: ओय थोक तबने इंद्र वंश की निंग थौरे स्वर्ग दैवा कालसिलिया हिंगली मै तेई निंग ओय कुरंगने यनी आईदी निंग थौ फंबाल बु पाम किदे निंग थौ फंबाल बु ngak चबा लाई माई दुख कोई रुबने लेंग सिन बिरो स्वर्ग देव फंबाल हांग बताओ है दे तमोई सेंग न कच्चर बने इंद्र वंश की फंबाल
2: हे मा नंगी पुहारी दे तदा इंद्र बलंगला वो योरगनी इंद्र वंश की फंबाल अहो ममदी मैत्तई अनीगी ई मरी की मुन्ना इधर पुयाओ है उन्हें थमलम लगे कोई माँ

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
2: जी,
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
3: जी,
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं।

0: जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
0: जी।
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ। So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.

0: And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर, जय भारत।
2: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह।
4: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।

0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
0: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजामात कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
2: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
3: अप्पा ये नहीं हो सकता।
2: देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
3: ये नामुमकिन है।
2: व्हाई?
3: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
2: तो तुम नहीं मानोगे। देखो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
3: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
2: एक्चुअली यू आर अ फूल।
0: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: NCERT ki tengbanga loine na sanduk jeba thoram umang tavire akashwani imphal hoji kamuk tavire si science magazine aiba dr mayang lambam ajit kumar thoram buthokpa rai chanda jingtham thoram lanthoklibi langpok lakpam laishna

0: Western music ki thoram tavire. Adongi damak thoram sandoktuna tahanjari basi Akashwani Imphal dagini.
1: Hai nei. Mioi bagi punsi di pokom dana pokpa Brahma makna fangam daba mapok ni hai na. Achumba makni tanglaba punsi khongchat asida amuka suhena tanglaba mamal yamlaba mioi kya laitaba nate. Mayamadugi maraktagi ngasi puduna lakcheri pomphom sida sandokchaba saknai ravasingi wari da Maharaj Kumari Binodini. Maharaj Kumari Binodini mayamna MK Binodini haina khangna biasi Englishinga machamapal kunni thoygi February gi tang darukta Maharaj Churachan Singh KCSI CVE amadi Maharani Ngangbi Devi gi mamom oina Manipur gi sana konung da taiwang faurakhi machin manau manga gi manung da Binodini na khwaidegi atonbini mapa ibungo Maharaj gi midyeng khada sana konung gi fajaba chatna biloncher bebar thakshi khasi akanba midyeng chaira khada chaurakhi mapa ibungo amadi mama ibema ngangbi Maharani gi midyeng khada chaurakhi bi Binodini Mahima Singh Lamdashu Piklingaidagi Hona English ki chatnabi Sajat Lonchatna Chingba Tambinaba English Lady Singh Mishut Amadi E. M. Jolina Chingba Thamduna Tamhanki Karigishu Mithoi Mihen Oiroi Pak Chauraba Konung Sri Gobindagi Laikol Nungda Chauraki Vibinodinina Nupibu Awang Bathakta Pukhatpa Pamki Mahima Singh da Pallagana Class 1 gi Matungda Pine Mount School, Silong, Class 7 dagi 10 phaubuna, Smriti Mandir School, Navadipta Tamki, Adubu, Class 10 da mai pakhide. Englishing machamapal kuntra mapanda, Tampasana Girls School, Hojingna TZ High Secondary School da, First Division da mai pakhi. Class 11, 12, matamaduda, IA haina khangnaba mahege thak, St. Mary College, Silong, Amadi, Bena, Vidya Sagar College, Navadipta Loishinki. Lai Yekpa Amadi Murti Sababu Khoida Rubana Santiniketanda Inkumja Lishingama Chamapal Nifu Mangada Chatuna Afauba Artist Ram Kinkar Bezgi Makhada Tamki Mapai Bungo Churachan Singh Na Matam Aduda Anoba Manipur Ama Oinabagi Damak Nongchuplongi Mahima Singh Tamduna Anoba Maikei Romda Pukhatna Bukhatna Bada Mahakshu Pukning Lupna Pamchaki Amadi Bengalgi Saita Da Maming Lairaba Aiba Kaya Sarat Chandra Chattopadhyay, Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Nachingba, Saknai Rabasinghi Pukningi Wafam Singha Loinana, Ibagi Mami Chauna Taki. Mazai Bema Maharaj Kumari Binodini, Miyamgi Imasi, Khara Ahal Oi Rabasinghina, Sanai Bema, Iramdam Ijati Bunung Sibatana, Thabak Thauram Kayada Pukhatna Bahonaki, Amadi, Nupi Obishingna, Chakumda Namduna Laibagi Mahuta, Kori Rol da Chingsinana Bohona Kibi Amani. Binodini Upanyaskarni, Wari Macha Ivini, Drama, Film Script, Lamkoi Wari, Lai Yekpa, Lai Saba, Sairing Bi Aduga, Sairang Bi Amashuni. Mahak Manipuri Film Gi Jagata, Ahan Bat Lamjing Bini Haibada, Haiman Batokloi. Mahaki Korjai Dagi Tokibani, Imagi Ning Tem, Asida Sunatana, Ngasi Ngasi Makshu, Akashwani Imphal da Sandokli ba Isai Kaya, Ayi Bigi Khuti dagi Tholakpa Maye Kaya, Marang Kaina Lady. Kanada Sinani Firal Asi, Rup Ragi Kambuna Sakpa Isai Asimaki Mayekna Aduma Khangle, Imale Baki Damak, Tungi Mirol Gidamak, Kayam Nung Sibage Havasi. Konungi Majai Bema Oibagi Nungai Zavadagi, Yumban Binupi Amagi Punsida, Kwaidagi Tamoy Shokpa Thaudokayana Tasinduna Sakrabi, Binodinigi Tamoida, Asau Bahaibadu, Nomata Utkide, Laminaba Mioi Pumba, Machama Naukum Nungsina Loinabiki, Punsi Sandhya Yoruklaba Matamda, Tatanason Kiba Wahini, Nakoi Asuk Yamna Ijasing Lady Basidi, Asumna, Acho Macha Kaidana, Amata Oina Kanki, Mipum Kudingmak. Saknai Rabi Binodini, Englishing Ani Tara Mathoigi, January Tara Mathoida, Punsi Chengje Loiraduna, Taibangpal Thadoki. Mahakumbi Amathukibadi, Lamdam Asigi, Achoba Ahoba Amadi, Adumak Marai Ragani.
0: Saknai Rabi Singhi Wari De Taviri, Maharaj Kumari Binodini, Akashwani Imphal, Hojik, Delhi Digri Leda, Dopahar Chamachar Fangbi Ragani.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
4: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
3: Will become even more important to the world.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
6: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू

0: शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम में पेश है महफिल और आज हम लेकर आए हैं कुछ फिल्मी कव्वाली। तो सुना जाए पहली कव्वाली फिल्म हिना से लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद, फरीद सबरी और सतीश की आवाजों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन द्वारा।

अगली कव्वाली पेश है दावते इश्क फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है जावेद अली और सुनिधि चौहान ने। कौसर मुनीर की शब्द रचना है और साजिद वाजिद का संगीत।

दोस्तों कंगला चैनल में अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिल। पेश है अगला गीत AR रहमान, मोहित चौहान और जावेद अली की आवाजों में। फिल्म का नाम है रॉकस्टार। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया AR रहमान ने।

पेश है अगला गीत फिल्म अग्निपथ से, सुखविंदर सिंह, आनंदराज आनंद और कृष्णा बेवरा की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

ताविरे रेडियो लीला उथावा अंगावा लीला सिगे अरोइबसरो लीला सानबिखिबा खोरीफावा आर्टिस्ट एसोसिएशन गे लीला कांगबू

खंग हन जवा आकाशवाणी इम्फाल की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की खुथांग फॉर्म थाजिंदी खंग हन चरी मदुदी बीदगी बी हाई ग्रेड कानवगी ऑडिशन लाखली बजुन की तांग निपान हौजरगने मे कुन गमाफन फाट लौबीरनवा खंग हन चरी खंग हन जवा लोजरी

0: भान्स में लोग मियंग दाइजे बता रहे
1: हाँ
0: टेक्नोलॉजी साखोलक पसी ना कदाई फाव एनवायरमेंट डिग्रेडेशन द माना कंट्रीब्यूट तो वे अदो को नकल लमरोम द ना एनवायरमेंट कन्ना बहो ना बदा एनवायरमेंट नाक पस हेन बगी माइकई द लाक ना बहो ना बदा मा की करी थोदांग लेब गे है बुदो ओजान सिगी मतांग जु थंबियो
1: होय अखोय टेक्नोलॉजी हुजे अदु मति खम थेंगना साखोटपा मतम हाइबदु ओइरे अदु बो अखोयना टेक्नोलॉजी हाइबे मतम ददि टेक्नोलॉजी से करिनो अदु से अखोय तंग कुपथने यंगबम संगी से खुदमयना टेक्नोलॉजी गि लमदा अखोयना वरि सानारिबा अखोयना कम्युनिकेशन हाइतारि को पाफुनारिबा सेगि टेक्नोलॉजी लैदोरिबनि अदगे मो ट्रांसपोर्टेशन अखोय चथोक चन तौरिबा लैदिनो को सिगि मरमद लैगनि अदगे मो अखोयना मै पुथोकदना अखोय इनर्जी गि हाइतारि को सिगि मतांगि टेक्नोलॉजी लैदोरिबनि अदगे मो इंडस्ट्री मैम लैदिनो को इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मतम ꯃꯇꯪ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯪ ꯃꯇꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯁꯥꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯄꯣꯠꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯝꯅꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯎꯃꯪꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯎꯃꯪꯁꯤ ꯄꯥꯛꯁꯤꯅ ꯀꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕꯗꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯠꯇ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯀꯣ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏ ꯇꯨꯡꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯀꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯦ ꯐꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯝꯕꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯤꯡꯄꯥ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝꯅꯦꯕꯁꯦ
2: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕꯃꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯁꯨꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯥꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯤꯍꯤꯀꯜꯒꯤ ꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯊꯝꯖꯩ
2: ꯁꯣꯝꯒ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤ ꯇꯨꯡꯀꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯒ ꯉꯁꯤꯒ ꯁꯝꯅꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯍꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯦ?
1: ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯖꯕꯗꯣ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ
2: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯟ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯆꯪꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯔꯩꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯆꯝꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯔꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯗꯨꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ

ताइबंग मपुगी खुसेम लगता पुमनमकतगी हेन हेली हाइदुना आइखोइबु मिंगौनै मियोइबा अमरोमदा अमुक वाखल ताराबा मियोइबा आइखोइना मालेमदा ताइबंग सिन्था कया पांगदुना फजरबा ताइबंग लैकोलासिदा लैशा तमलिदो असुमना लैशा तमलिङै पुंसी इचेलकसिदा वाखलगी मंगलान कयाना असागी कैराक ओइदुना सिंगदोल पक्न वांगलावा स्वर्गगी लमदम जौना सच्छिदो खुदोलगी मरी सुगदा हिदंग मयुम रोमा देवीगी खोंजलदा हाउबम मिराबाइना सैरेंगबो इशेयमा तामिनासी।

ताहन जुकीबा इसे ऐसे के लोयना ना मतांगा सेदा नशी के लोयना दी मतमुशे शंदोकबा लोशिंजरी मखल मथल के थौरों के आना लाइटिंग लीबा आकाशवाणी इम्फाल की कंगलास चैनल की थौरम सिंह ताबिरी बसिंबो अमुक कहना दोंगे अनाउंसर अरुण बलाना तराम न ओकचरी लोयना ना पुंगफों मसिदा पुतुना लाक्चरी मैयाम ना ताबी निंगदुना पोस्ट कार्ड के खुदांग दा अमदे एसएमएस के खुदांग दा खान बिरकबा फिल्म शेषिंग मथंग मथंग होयना खुदोल के हान बदा इंगाले फिल्म दगे असेम बिमुला अमदे मरुप सिंगल लोयना ना पुना सकमिनाबा वी जेंट कुमार शर्मा ना सैरेंगबा खुंजोय कुमार ना सैरांग विशेयमा खुदोल तमजरी इसे ऐसी ताबिनिंग है दुना पोस्ट का थावी रखली बसिंग ना संजन बम दगी रोनाल मणिबाबू अमदी चिरांग दगी थोईवी शांति रानी तोम्बी मरुप सिंगी ताबिनिंग है दुना खान भी रखली विषय खुदोल तमजरी

खुदोल की मरी सुबह से दी कौनथा अहलुप्तगी लाइश्रम नेत्रजी थवा बिना इनाउबा हेरोजित लाइश्रम मरुप सिंह असिना खान बिरकपा अटिया की मिनोक फिल्म दगी मंदाकिनी की नाइटोंग खोंजिल्दा के एस एस किशोर कुमार ना सैरेंगबा जी सुचंद्रना सैरंग विषय ने खुदोल तमजरी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 10:31:17। तो चलिए आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की आवाज के साथ। सौदागर फिल्म से ये गीत। आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर श्रृंगार आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, कुछ सौदे ऐसे ही खूबसूरत होते हैं अगर बात हो दिल लेने और देने की। और बात ये हो रही है खुशियों की, क्योंकि मोहब्बत की बात है तो खुशियों की बात जरूर निकलेगी। मेरी हर खुशी का रास्ता तुम ही से होकर जाता है, मेरा हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुस्कुराता है। तुम सिर्फ मेरे प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी का सुकून हो। इस दिल की हर एक धड़कन में तुम ही छिपे हो। अगला गीत धड़कन फिल्म से अभिजीत और अलका की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस तुम से शुरू और तुम पर ही खत्म है। जी हाँ, ये बातें तो कभी खत्म नहीं होती, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है क्योंकि आप जुड़े रहते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के संग। आज आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार, और हर श्रृंगार में मैं हूँ आपके साथ अर्पना। 10:46 हो चुके हैं। अगला गीत एक बार फिर से अभिजीत की आवाज है, फिल्म का नाम है जोश।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज, दामनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, गीतों का असली जादू यही है कि गीत संगीत हमारे दिल की गहराइयों को आसान शब्दों में खूबसूरती से पेश कर देते हैं, और जब बात प्यार की हो तो ये रिश्ता और भी खास हो जाता है। प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल है, पर गीत उसे एहसास को बहुत ही आराम से गीतों से माध्यम से महसूस करवा देते हैं कि हमारे दिल में आखिरकार सामने वाले के लिए है क्या। फिलहाल वक्त हो गया है 10:51 नहीं 55 हो चुके हैं जनाब। तो लीजिए, इसी के साथ 10:55:40 हो चुके हैं। अगला गीत होगा खूबसूरत फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर समाचार। 11:10 पर होगा गीत मेरे मन मीत, आपके संग रहूंगी मैं अर्पना। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद, और इसके बाद समाचार जरूर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल कैरिड बाई देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
1: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। और वक्त हो गया है 11:11, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। सही है, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज में होगा ये गीत, फिल्म का नाम है कर्ज। और इसके बाद आप सुनेंगे इंदीवर का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत, नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गीत होगा, फिल्म का नाम है खून भरी मांग। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मनमीत में। आज आपके साथ है अर्पना। 11:11 और 40 सेकंड हो चुके हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ग्यारह बजकर 27 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगले दो गीत जो है उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। आनंद बख्शी का लिखा हो

एक और गीत होगा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की, और फिल्म का नाम है हीरो। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत, एक बार फिर से राजेश रोशन का संगीत होगा, इंदीवर के लिखे हुए बोल होंगे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की होगी, फिल्म का नाम है कामचोर। इन दो फिल्मों से आप गीत सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:45 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है विशाल भारद्वाज का संगीत है, गुलजार के लिखे बोल है, लता जी की आवाज में होगा माचिस फिल्म से गीत, और इसके बाद होगा 1982 में आई फिल्म डायल 100 से गीत। कुमार इसके आवाज जो है वो है किशोर कुमार की है, महेंद्र कपूर ने इनका साथ दिया है। और इसके अलावा संगीत की बात करें तो संगीत है बपी लहरी का, तो आप इस गीत का आनंद लीजिए, दोनों गीतों का बल्कि मैं कहूंगी कि आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ दोस्तों, रात को नींद कैसे आ सकती है जब गीतों का ऐसा सिलसिला चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर। अगला गीत आप सुनेंगे उत्सव फिल्म से, लता जी और आशा जी की आवाज़ में होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत है और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाज़त। उत्सव फिल्म के इस गीत के बाद आकाशवाणी के FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना चाहेगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे।

प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। NIA के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी। कार्यक्रम है निशिगंधा, जहाँ जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी की उस हकीकत की, जिससे रोज अंदर ही अंदर हम लड़ते हैं। बज़ाहिर हम दिखते खुश हैं, शायद हो भी, पर हम आज बात कर रहे हैं उस कश्मकश की जो हमें अपनों से दूर कर रही है, हमें अपने अपने अजनबी बना रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए ना हमारे साथ, देखते हैं क्या हल निकलता है इस कश्मकश से निकलने का।

आरडी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म आपकी कसम का ये गीत सुना आप सभी ने। और आज हमारा जो मौजू है थोड़ा सा भावनात्मक भी है और थोड़ा मुश्किल सा मौजू भी है और हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन क्या करें, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। आज का जो समय है ना, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उसके बावजूद हमारी आपस में एक दूसरे के लिए अजनबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में ही ले लीजिए, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, सभी एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी उनके बीच भावनात्मक दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। हम अपने अपनों को खोते जा रहे हैं और उन्हें अपने अपने अजनबी बना रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, कौन है यहाँ बेवफा।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशी गंधा का और हम आज बहुत ही अपनी खास बात कर रहे हैं अपने अपनों के।

दिलों का हाल जानने की कोशिश में आज हम निकल पड़े हैं। देखिए ना, आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, नौकरी की भाग दौड़ है, शहरों का अलगाव और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, इससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कमज़ोर हो रहे हैं। रविवार की एक छोटी सी फैमिली पार्टी ही को ले लीजिए। किसी शादी का उत्सव में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेज़ पर चाय नाश्ता चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। अगर किसी ने पूछ भी लिया, बेटा नौकरी कैसी चल रही है, तो सामने से जवाब मिलता है, ठीक है चाचा, बस बात खत्म। कोई गहराई नहीं, कोई दिल से पूछताछ नहीं। ताई ने अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो सामने से जवाब में एक औपचारिक मुस्कान आ जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्या आपसी प्यार इतना हल्का होकर रह गया है? क्या हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं? मेरा कमरा, मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मेरी शर्ट, मेरा जूता। पहले हम अपनी चीज़ें बांट लिया करते थे, अब अपना अपना करने लगे हैं। क्या कहीं हम में बदलाव आ गया है? अगर है तो हमें फिर से बदलने की ज़रूरत है। प्यार की कहानी दो लफ्ज़ों की है, तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपने आसपास उसे आजमाया जाए।

आशा जी की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, और साथ में शरद कुमार की आवाज़ भी थी और अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ आपको इस गीत में सुनने को मिली होगी। बात कर रहे हैं निशिगंधा में आज अपने अपने अजनबी हो जाने की। ये जो अजनबीपन बढ़ रहा है आपसे रिश्तों में, इसका एक तो सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो है समय की कमी। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। चाचा शहर के एक छोर पर रहते हैं तो ताया दूसरे राज्य में। मिलना सिर्फ फेसबुक पर वो जो हैप्पी बर्थडे वाली शुभकामनाएं हैं ना, उन्हीं तक सीमित हो गया है। दूसरा, आप समझिए कि आर्थिक असमानता भी एक कारण है। एक भाई की आय अच्छी है तो दूसरे की कम। इससे आपसी रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और जो है दूरी भी पैदा हो रही है। कभी-कभी पुरानी बातें, संपत्ति के झगड़े या फिर शादी के लिए गए फैसलों पर भी मतभेद रिश्तों में दरार डाल देते हैं। बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर यह सच है। हम आज किसी को भी समझना नहीं चाहते और बिना समझे ही सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं, और सब बिगड़ जाता है जब हम उसी धारणा में जीने लगते हैं, बिना एक दूसरे को सुने, बिना किसी को समझे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी।

घर पर चाचा चाची आए तो बस हेलो हाय और बाय। उनकी समस्याएं यानी कि चाचा चाची की बातें, उनकी समस्याएं, उनके अनुभव सुनने के लिए आज के युवाओं में इच्छा ही नहीं रही है। पर सारा दोष जो है युवाओं पर नहीं डाला जा सकता, शायद हमने भी कहीं चूक कर दी है। रिश्तों से ज़्यादा महत्व उनके अपने समय को दिया, उनके दोस्तों को दिया। जब समझने की ज़रूरत थी तब शायद हम ही चुप रह गए, और या फिर हमने ही रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी या उन्हें उस तरह से समझाया या उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते जो हैं हमारे कितने मूल्यवान हैं और इन्हें हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं किसी एक पे गलती थोपना गलत होगा। ये हमारी आपसी समझ का ही परिणाम है कि आज हम अलग अलग होते जा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और आज निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं अपने अपनों की, जिनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो दूर जाने से पहले इन रिश्तों को मना लेना चाहिए, अपने पास बुला लेना चाहिए और समय निकाल कर अपने, मतलब जो अपने हमारे अपने हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये जो दूरियां हैं ये घट जाएं, कम हो जाएं।

हमारे अपने भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से शामिल हैं, उन्हें रोक लेना है, उन्हें जाने नहीं देना है। हमारे छोटी छोटी सी कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। अगर परिवार में पार्टी हो तो मोबाइल बंद करके बैठ के देखिए, पुरानी यादों को ताज़ा करिए, एक दूसरे की समस्याएं सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो बिना शर्त मदद के हाथ बढ़ा दीजिए। एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों को बचपन से ही रिश्तों के महत्व को सिखाइए। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। आखिरकार जीवन की यात्रा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर चाचा चाची, ताया ताई अजनबी बन गए तो फिर अपना कौन बचा? समय है कि हम इस अजनबीपन को तोड़ डालें और फिर से अपने बने। अपने अपने अजनबी बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये धीमी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक है। इसे रोकना हमारे हाथ में है। परिवार की गर्माहट तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समय दें, सम्मान दें और प्यार दें। वरना भीड़ भरे घर में भी हम अकेले और अजनबी महसूस करते रहेंगे।

निशिगंधा का ये सफ़र कहता है कि आपसे यहीं इजाज़त ले ली जाए। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार, बने रहिएगा आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना

उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आपके साथ आज की रात मैं हूँ माधुरी।

बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ये रहा, और ये गीत था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से, लता जी की आवाज़ और वसंत देसाई का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये प्यारा सा जोशीला सा गीत सुना आपने गीता दत्त, महेंद्र कपूर, मुकेश मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म श्री 420 से।

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म जाल से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म आजाद से, आवाजें लता और उषा मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे ये गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म तीसरी कसम से, और शंकर जयकिशन का संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से, लता जी और मन्ना डे की आवाज़ है और गीत आप सभी के लिए।

0: AIR at 90.
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो सफ़र आपने तय किया, इसका नाम था गीत सुहाने। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं इसमें आपके लिए, और एक आखिरी गीत इस सफ़र का बचा हुआ है, वो भी हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आशा जी और मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में, और गीत आपके लिए।

गीत सुहाने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई। रात सुरमई लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। किसे आए नजर अंधेरे में, हाँ कोई है मगर अंधेरे में, एक दो पल को फिर से उभरा है एक दिया डूब कर अंधेरे में, इससे आगे जमीन हो शायद, सोच कर पांव धर अंधेरे में।

मोहब्बतें उल्फतें शिकस्ता शिकस्ता दिल हसरतें शिकस्ता, रहे सहे ख्वाब टुकड़े टुकड़े, बची बची लज्जतें शिकस्ता, करार के लम्हे टूटे टूटे, सुकून की साँतें शिकस्ता।

धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 2:28 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। बात लफ्जों के दरमियां रख जा, अक्ल वालों का इम्तहान रख जा। रूट कर सबसे जा रहा है तो दिल में झूठी तसल्लियां रख जा।

जगजीत सिंह की आवाज़ में वो बात है कि हर दिल की बात अपने आप ज़बाँ पर आ जाती है। ये बहुत अच्छी सी एक ये बात है जो आप तक पहुंचा रही हूं कि जो मेरा वो उसका गम हो, ये कैसे हो सकता है। शामो सहर का एक मौसम हो, ये कैसे हो सकता है। दिल में कुदूरत, जहन में नफरत और जुबां अंगारा हो, फिर लहजे का सुर मध्यम हो, ये कैसे हो सकता है। जज्बों का मासूम परिंदा उड़ता है हर मौसम में, रंजो खुशी में आंख न नम हो, ये कैसे हो सकता है। और दिल की बात समझने वाला कोई तो होगा, शहर ये सारा शहरे अजम हो, ये कैसे हो सकता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है रात सुरमई का। समय हो गया है 2:41 और पूरे 47 सेकेंड्स।

चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल ज़रूर पसंद आई होगी आप सभी को। दरवाज़ा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज़ दे रहा था तेरा रास्ता मुझे। दिल पे वही है बोझ, वही सुबह शाम है, फिर भी ये साल जाने क्यों अच्छा लगा मुझे। मैं खुद ही जानबूझ के नजरें चुरा गया, वरना तेरे सुलूक ने टोका तो था मुझे। अगलों की तरह उसको भी दावा था साथ का, ये और बात आज वो तन्हा लगा मुझे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला

FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग, हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ। नमस्कार।

वाक्य में ही दोस्तों, जिसने इस दिल को और दिल के जज्बातों को समझ लिया, उसने सबका प्यार पा लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं लोग किसी से बात करते हैं, कोई प्यार से बात करता है तो कोई गुस्से से, लेकिन आपकी मीठी वाणी सुनने वाले के दिल को जीत लेती है। दिल एक मंदिर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ पत्थर के सनम फिल्म से, ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अख्तर रोमानी की रचना थी और दोस्तों ये गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब वो गीत जो आपसे मैंने कहा था, धुन पहचान ली ना आपने, पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत।

0: जब कोई इंसान किसी को चाहने लगता है तो देखा गया है कि उसे उसकी वैल्यू ही सब कुछ लगने लगती है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।

संजोग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, SH बिहारी की रचना है और OP नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी कोई अमूल्य चीज आ जाती है। और अब एक और गीत सुनने का आनंद उठाते हैं।

संगम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हमरा ही कार्यक्रम अभी जारी है और गीतों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।

सूरज फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब अगला गीत, ये रात फिर ना आएगी, फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे जंगली फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज़्यादा है आपसे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंघ अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस कार्यक्रम में आप सभी को गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूँ मैं वंदना चुग। नमस्कार।

किसी की आवाज, किसी की बात आपके दिल की इतने करीब हो जाती है कि आपको लगता है ये हमारे जीने की वजह बन गई है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना बरसात की रात फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आपकी खिदमत में, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे इस जिंदगी हम दूर से पहचान लेती हैं।

हकीकत फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफी आज़मी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अंदाज फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हर दिन की शुरुआत हमारे लिए नई होती है और हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे और नया करके दिखाएंगे और अच्छा ही सोचेंगे।

0: दूर का राही इस फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। इरशाद की रचना थी और किशोर कुमार का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अरुणिमा इस कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

घर संसार, इस फिल्म से गीता मन्ना डे और आशा भोसले का गाया हुआ मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रवि का संगीत। अब अगला गीत, जिसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपका दिल वहीं बसता है जहां आप रहते हैं। वैसे भी आप कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन जब अपने घर आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।

दोस्तों, फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे। श्री 420 फिल्म से ये गीत था। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज वही जानी पहचानी मुकेश की थी। अगला गीत आप सुनेंगे कोहरा फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों ये तो सच बात है।

दोस्तों, हम समझते भी हैं और जानते भी हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सब को हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और परवाह किए बिना ही उन जिंदगी में आए थपेड़ों को सहन कर लेते हैं। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो हमें खुद को भी एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़े मंजर से गुजर गए। आपको बता दें, मेरी जंग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ। आनंद बख्श के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, बहुत से गीत हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं और हमें देते भी रहेंगे। और बहुत बार किसी का मूड ठीक नहीं होता तो वहाँ भी हमें गीत ही याद आते हैं। और अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों का गाया हुआ है। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हर गीत में कोई ना कोई बात छिपी होती है और यहाँ भी ये गीत हमें कह रहा है कि हमें अपना स्वभाव ऐसे सम रखना चाहिए कि हर कहीं हम अपने आप को ढाल लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक

0: स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना ऊपर वाला है और वही उसकी पालना करता है। वैसे तो सभी की पालना वही करता है, वही चिंता करता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो वही किसी ना किसी रूप में आता है, बस बुलाने की ही देर होती है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों, हर इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है, इसलिए अपने कदमों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे ही छोड़कर जाएं।